0: कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे। जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 2 3
1: License number 10394.
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है। चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैं पता तेरी जिंदगी खुशहाल है, तो खुशहाली सोनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस ना हो जाओ शिकार, तो कौन पड़ेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, कियां चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल

0: सरकार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोस, ते हां पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भूलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਇਨਕਮ? ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ? ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ,

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477020223 6 7 4 2 0 2 3 6 7 4 2 0 2 3
1: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भूलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरबरम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
2: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਇਨਕਮ? ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ? ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਮਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ

0: बात है, बिल्कुल जी। ते चलते हैं अपन एक कॉल दे वाल। जी सत श्री अकाल।
1: अकाल वीर जी, की हाल है?
0: बहुत वधिया सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल है।
1: बस ठीक है जी। बस मैं थोड़ा रेडियो सुनता सी, गड्डी चलाउंदा सी, ड्राइव करता सी।
0: वेरी नाइस जी, क्या बात है, आवाज पूरी सही आ रही है जी।
1: बिल्कुल सही है जी वीर जी।
0: क्या बात है मेरे जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दसन दे लई। ते प्रोग्राम एंजॉय करो, ते आपां टॉपिक ते वी गल करदे आं। थैंक यू वीरे,
1: थैंक यू वीरे, थैंक यू।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है, ते चलते हैं जी आपां नेक्स्ट कॉल दे वाल। लाइनां साडियां हुण सही ने, ते खोल भी दित्तियां आपां लाइनां सारियां, ते साडे नाल जुड़ चुके ने यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो सारांश जी। पहला ते वेलकम करिए सारांश जी, वेलकम।
2: थैंक यू जी, बहुत बहुत जी, एंड सभी को सत श्री अकाल हमारी तरफ से।
0: क्या बात है सारांश जी, गलबात कर रहे सी आपां, सारांश जी आणगे दसणगे भी की कुछ कर रहे है। वैसे जदों लास्ट टाइम आपां ऑफिस दे विच विजिट कीता, ते मैं देख के हैरान सी किन्ने इंटरेस्टेड परसन ने। हर एक नूं इह भी साडा करियर चेंज होवे, असीं स्टडी करके एक वधिया होर बैटर करियर कर सकीए, ते उहदे लई तुसीं जिहड़ियां हैल्प कर रहे हो। मैं ऑफिस दे विच देख के भी हैरान सी किवें इंटरेस्ट सारिआं दा आ रिहा है, पर जिन्हां नूं हजे तक भी कई बार नॉलेज नहीं पहुंच पाती, इनफॉरमेशन नहीं पहुंच पाती, उन्हां दे लई की मैसेज है? यूनी ग्लोबल एडवाइजरी की कर रही है, ते जिन्हां ने करियर चेंज करना है उन्हां लई किदां बैटर साबित हो सकदी है जी सारां जी?
2: हाँ जी, यूनी ग्लोबल एडवाइजरी 7 ईयर्स हम बिजनेस में है, एंड देन बहुत सारे क्लाइंट्स को हेल्प कर चुके हैं, और स्किल भी डेवलप कर रहे हैं। अब स्किल अप हमारे पास आपके लिए करियर फोकस प्रोग्राम्स सच एज HVAC, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग है। ऑन अदर हैंड हमारे पास सौखे जो प्रोग्राम्स भी ने अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि फुली ऑनलाइन है। ज्यादातर क्लाइंट्स चूज करते हैं फुली ऑनलाइन प्रोग्राम्स, जो वो घर के कम्फर्ट से अटेंड करते हैं 2 से 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे सिर्फ, दैट्स इट। और उसके बाद कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो आप कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी वाले हैं, और सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट फंडेड हैं। कुछ टीचर लेड क्लासेस हैं, कुछ टीचर के बिना वाली क्लासेस हैं, सेल्फ स्टडी जैसे मैं कह रहा हूँ, जो बहुत ही ज्यादा ईजी है। सो गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट उनकी फीस पे करती है। अब गवर्नमेंट जी उसी कॉलेज उसी प्रोग्राम की फीस पे करेगी जो एक पैरामीटर पे खरे उतरते हैं। ऑन अदर हैंड बाकी साथ ही साथ आपको आपके खाते में, मेरे में नहीं, आपके खाते में 30 से लेके $100,000 की फंडिंग गवर्नमेंट करती है डायरेक्ट। क्यों करती है? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर पाए उस टाइम पे, बच्चों को खाना दे पाए, ग्रोसरी कर पाए, आप उस पैसे को कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकते हैं। उस पैसे के 2 पार्ट है फंडिंग के, एक है ग्रांट जो वापस नहीं करना, एक है ऑप्शनल लोन जो कि 1 साल तक 0% पे है, और इसमें नो क्रेडिट चेक, नो एज लिमिट। आपकी एज 30, 40, 75 जितनी भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती एज पे। बड़े क्लाइंट्स हमारे पेंशन पे वो भी कर रहे हैं, और कोई क्रेडिट चेक इसके अंदर नहीं होता। अब आती है हाथी चीटी की बात, ऐसे आपके मन में हाथी जैसे, लेकिन हमें देनी हमें चीटी। फीस कितनी हमारी? 199 से 499। काम होने के बाद देने, शुरू में भी देनी है आपने। आपके खाते में पैसे कितने विद इन 30 to 90 days, तब आपने हमारी फीस देनी है। हमने सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा है, चाहे हमारा नुकसान हो जाए बाद में, फीस ना दे, हमारा नुकसान हो जाए आपका ना हो। तो ग्रांट फंडिंग सुन के लोग वैसे ही डर जाते हैं, बट हम वो काम करते ही नहीं जी। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? नोटिस ऑफ असेसमेंट, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर फैमिली ऑफ 4 है अप टू 80,000 की फंडिंग मिल जाती है उनको, और इसमें से आधा पैसा क्या है? ग्रांट्स जो वापस नहीं करना, जो मैं आपको पहले बता रहा था, ग्रांट्स जो वापस नहीं करना, टैक्स फ्री होता है ये। और
0: जी सारा जी, एक चीज हो रहा है, ते एदे लई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रहेगा? बंदे दी इनकम की होवे, या केड़े केड़े डॉक्यूमेंट्स तुहानू चाहिए हुंदे है मोटे तौर दे उपर, वह भी जरूर दसो प्लीज।
2: हाँ जी, एलिजिबिलिटी आपके पास, आप ओंटारियो में किसी भी सिटी में रहते हैं, क्योंकि हमारे पास फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे वाटरलू रहते हैं, जीटी रहते हैं, दैट डजंट मैटर। पीआर सिटीजन या प्रोटेक्टेड पर्सन मींस आपका रिफ्यूजी का केस पास है, आप एलिजिबल है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम, जिसका आंसर हम एयर पे भी दे रहे हैं और ऑफ एयर भी देंगे, अगर आपकी इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे $70,000 से कम है तो ही आप हमें कॉल करें, तो ही आपको बेनिफिट है। अगर आप सिंगल है, आपकी सिर्फ फीस कवर होगी, लोन कॉलेज की फीस कवर होगी, लोन ही आएगा सिर्फ, आपको बेनिफिट नहीं है। अगर आप मैरिड हैं, अप टू 45,000 फंडिंग मिलती है आपको। अगर आप मैरिड विद 3 kids हैं, आपको अप टू 100,000 की फंडिंग मिलती है, जिसके अंदर से हाफ पैसा क्या है? ग्रांट, और बाकी नो क्रेडिट चेक, और फीस हमारी बाद में देने को हमने, इट्स वेरी सिंपल थिंग। सोखे जो कोर्सेज ने हमारे कितने ही हाउस वाइफ है, ऊबर ड्राइवर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ट्रक ड्राइवर है, जो घर से स्किल डेवलप कर रहे हैं, अकाउंटिंग का कोर्स करके बहुत लोगों ने बिजनेस भी स्टार्ट करा है। तो आप हमें कॉल करें, हमारा ऑफिस 200 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हरिद्वार डेयरी पे है, मंडे भी आप आ सकते हो, ऑफिस ओपन है हमारा, और असाइनमेंट से एग्जामिनेशन नहीं है, सोख है जय कोर्सेज ने, बाकी बातें करेंगे हमारे ऑफिस में, आप एक विजिट करें और आपको अच्छा बेनिफिट होगा, अभी ही आए। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त से रूल चेंज हो रहे हैं, लोन आ रहा है, ग्रांट गवर्नमेंट कट्स कर रही है, ग्रांट पे जो गवर्नमेंट यूक्रेन को इतने फॉरेन एड में इतने बिलियन डॉलर्स दे रही है, वो गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट कर रही है एजुकेशन में, आप अभी आए और अपने लाइक फंडिंग हासिल करें, स्किल हासिल करें। नंबर हमारा क्या है? नंबर है 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175। डॉक्यूमेंट्स भी जी सिंपल से लगते हैं, कोई इसमें गवर्नमेंट के पास पहले से आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वोटर्स असेसमेंट बर्थ सर्टिफिकेट, कोई इसमें सेटिंग है नहीं, अप्रोच है नहीं, वही डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सबमिट होने हैं, जहाँ कारीगरी नहीं है वहाँ कमीशन नहीं है, जहाँ कमीशन नहीं है वहाँ पे कोई कैच नहीं है, सीधा साधा सा काम है, ऑनेस्टली हम 7 इयर्स हेल्प कर रहे हैं। नंबर अगेन 437-264-3175 437-264-3175।
0: जी बिल्कुल सरना जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुसी भी जरूर विजिट करो 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड इन मिसिसागा, जा बेटर है कॉल करके तुसी ज्यादा जानकारी ले सकते हो, 437-264-3175 437-264-3175 यूनि ग्लोबल एडवाइजरी सरांश जी। सरांश जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।
2: थैंक यू जी,
0: जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ते प्रोग्राम सर्व रेडियो तुहाडे होस्ट सरबजीत सिंह दे नाल।

0: होलसेल क्लब विच कीमतां घट हो रही हन।
1: पहलां नालों भी घट।
0: आ वेखो सैन पेलोग्रिनो दीआं चुड़ियां होईआं किस्मां 6x330ml सिर्फ $5.99 च।
1: इह तां होर भी घट है।
0: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तों भी घट।
1: ओए तू किथे जा रही है?
0: अपने बिजनेस लई पैसे बचाउण। तुहाडे बिजनेस लई पैसे बचाउणा साडा बिजनेस है। इस लई असीं कई आइटम्स दीआं कीमतां घट कर रहे हां। कोई फीस नहीं। होर जानकारी लई wholesaleclub.ca वेखो।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

कागज सगल सवारे, हर जिन सिमरिया नाम आधारे, ताप उतारिया संगुर पूरे, अपनी कृपा धार रहाओ। सदा आनंद कर हो मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर गाखिया, बड़ी बड़ियाई नानक करते की सतगाखिया। सूरत महला पंजवा, भय कृपाल स्वामी मेरे तित साचे दरबार, सतगुर ताप गवाया पाई, ठान पाई संसार, अपने जी जत आपे राखे, जमहे कियो हटदार, हर के चरण हृदय और तार, सदा सदा प्रभ सिमरिए, पाप काटन हार रहा।

आइए पाई मन तन शीतल हो। सूरत अल्लाह पंजवा संत हो हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहा सतगुर पूरा ताप गवाया अपनी कृपा तारी पार ब्रह्म।

राखी परमेश्वर उधरिया सब संसार सूरत माला परिवार मेरा सब गुरु रखवाला हो काल कृपा प्रभा करेगा हर गोविंद बाबा दरवा रहा सात संगत के सब फल पाए सतगुर के बल जाए

सफल कर मस्तक धारिया। सूरत महला पंजवा, जी अजंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाय अपने से बकिया पे रहते पूरण भई। पार ब्रह्म पूरा मेरा नाल, गुर पूरा पूरी सब राखी, वो सर्व दयाल रहा।

0: मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5090 पर कॉल कीजिए 9054567733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: गुण गावत नानक आलाप।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

रोग सपना से कभी अपना कृपा धारी आठ पहर अराधा स्वामी पूर्ण काल हमारी हर जियो तू सुख संपत रात रात ले हो पाई मेरे को प्रभुदास प्रभाव जो मांगो सुई सो पाओ अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरु।

वजह से मेरे गुरु सतगुरु ने अपना सगला दुख मिटाया। ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता जान सत स्वामी पूरन पुरख विधाता रहा।

0: पंच मुखी भगवान कवच सभी प्रकार के कष्ट को दूर करने वाला है। इसके नियमित पाठ सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर करने पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगलकारी और आप श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों आइए पंचमुखी श्री हनुमान जी के
1: श्री अंगारकताच स्तोत्र महामंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषि गायत्री छंद अंगारको देवता अम बीजम कम शक्ति रम कीलकम मम अंगारक प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। नमामंगारकं देवं रक्तांगं वरभूषणं जानुस्तंभामहस्ताभ्यां जापेषु वरपाणिनं।

0: प्रभु जय श्री राम, जय मदर। और विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की सोमवार की सभी शहरों में बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग की गई है, बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं। आप जरूर जाइएगा, बच्चों को साथ ले जाइएगा, अपने फैमिली के साथ। बहुत सारे लोग घूमने कहीं ना कहीं निकले हुए हैं, विच इज जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आइए, इसी के साथ आपका पहला लॉन्ग वीकेंड है समर का, इस साल का 2026। तो आइए, अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर का आपको बारबेक्यू चाहिए, या फिर बढ़िया बढ़िया अपने आउटडोर का सोफा भी चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयर पर रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। और उनकी मंथली स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, 905-799-0045 पे आप उन्हें कीजिएगा। और फिर आपने अभी शादियां होने वाली हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कोई भी मौका है, आप सोने के गहने लेना चाहते हो, सोने की बार्स लेना चाहते हो, डायमंड अप टू 70% ऑफ आपको चाहिए, तो आप जाइएगा अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है मॉर्टर में। तो और जानकारी के लिए आप अपने ऑर्डर बुक करने के लिए उनको कॉल कर सकते हो, 905-673-0100-905-673-0100। और अभी आपने घर खरीदा है, आपको मूव तो होना है, मूविंग के लिए आपका कनाडा भर में मदद करती हैं और बहुत हिफाजत से आपके सामान को ले जाते हैं एच के मूवर्स। आप उनको कॉल कीजिए, आज ही अपना मूविंग के लिए ट्रक बुक कर सकते हो। तो 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, तो एच के मूवर्स। और आपका कोई भी बड़े बड़े सामान को भी, आपके कारें और जो भी आपका सामान होगा, बहुत आपके लिए हिफाजत से उनकी पूरी टीमें अलग अलग हैं, तो वो आपके सामान को बड़े अच्छे तरीके से मूव करते हैं। तो एच के मूवर्स 416-524-6704 एच के मूवर्स।
1: यहाँ से आपको ढाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आइए, अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, पंजाबी का गीत, ठीक है जी। तो मिस पूजा ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं आपके लिए, तो आज उन्हीं का गीत आपको सुनाते हैं और उम्मीद रखूंगी आपको पसंद आएगा। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है और ट्रक रिपेयर के लिए आपको जाना होगा बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर, 715 रोड मिसिसागा में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो, 905-625-0055, 905-625-0055 पे आप कॉल कर सकते हो ट्रक रिपेयर के लिए, बेस्ट ट्रक रिपेयर टायर से। और अब आपके लिए बहुत सारे

जी हाँ, तो एक मैसेज से आप जी हाँ, तो पंजाबी का गाना एक के बाद दूसरा लग गया, तो आपके लिए बढ़िया सा गाना सुनाना चाहती हूँ, सोनी पावला का है ना, तो आपको जरूर सुनाती हूँ। बस अभी आपका अगर आपने किचनर वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना है बेचना है तो आप नसीब सिंह को कॉल कीजिए 519-546-1260 पे। आप नसीब ठंड को कॉल कर सकते हैं, अपने किचन वाटरलू गोल्फ में कोई भी किसी किस्म का भी आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको टोरंटो के आसपास के इलाके में घर खरीदना है बेचना है तो आप नसीब ठंड को कॉल कीजिएगा, नसीब ठंड आपके लिए बढ़िया तरीके से आपको सेवाएं देंगे। तो अब अगर आपने कहीं पे भी किसी तरह का भी आपको आपने किसी किस्म की भी आपको आपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर खरीदना है और अभी समर आ गई है तो आपने बढ़िया बढ़िया अपने घर के लिए सोफा फर्नीचर लेने हैं या फिर आपने अपने घर के लिए बढ़िया सा टीवी लेना है, लेटेस्ट मॉडल का टीवी लेना है, गिफ्ट लेके देना है किसी को, किचन की गैजेट्स आपको चाहिए बढ़िया लेटेस्ट और आउटडोर फर्नीचर चाहिए, वन ऑफ ए काइंड घर का फर्नीचर चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएं। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है दूसरी लोकेशन गोल्फ में, उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए। अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 9057-99-0045 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने मूव होना है, एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं तो आप और जानकारी के लिए अपने ट्रक बुक करने के लिए 416-524-404 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704। अब आपको सुनाते हैं सोनी पावला का ये गाना।

0: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो उम्मीद रख रही हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेना है और बढ़िया टीवी लेना है, लेटेस्ट मॉडल, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। लॉन्ग वीकेंड है, शॉपिंग करिए वहां पे जाके अपने घर के लिए, और उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, और जानकारी के लिए उनको कॉल कीजिए 905-799-0042, 905-799-0045। अभी तक 30 साल का आपने टैक्स नहीं भरा है, आपको HST फाइल करनी है, बिजनेस की पर्सनल जहाँ टैक्स भरना है, तो आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8835 पे कॉल कर सकते हैं। टोरंटो के आसपास में आपने घर खरीदना बेचना है, आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कीजिए 416-670-1313, 416-677-1313 पर आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए किस कौन सा गीत सुनाया जाए? सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।
0: जो जो ओल्ड इज गोल्ड सिलेक्शन है, उसी में से ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से ये गीत आपके लिए सुनाते हैं।
2: दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो,
0: तेरे घर के सामने
2: भंवर करे पुकार।

जाना पर न तुम गिराना आंसू के तरह निकाह से प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से आंसू छू लिया प्यार का।

0: सपना बैठ हार के साया बन के साथ हम चले, आज मेरे संग तू तुझे दिल के आरज़ू, तुझे मेरी आंख जब मिले जाने क्या कर दिया।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति पर है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ और रात को आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, अच्छे अच्छे गीत आपको सुनाएंगे और इसी तरह हमारा जो सफर है एक घंटे का मजे से गुजरेगा। तो बहुत सारे शहरों में फायरवर्क्स होगा, तो वीकेंड में खूब एंजॉय कीजिएगा, पर प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, बी सेफ। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सुबह दा पला, हैव अ वंडरफुल एंड ए सेफ लॉन्ग वीकेंड।

प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के चांदी प्यार का सोना प्रेम

0: घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की,
1: यहाँ ये
0: स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA. चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर. विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर. 9057900560. स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट, रामटर्न.
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी. हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर. मयंक भटनागर जी, 6477022023 6 7 2 0 2 3 6 7 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1: big or small, we move it all.
3: HK Movers.
1: Local and long distance, we also ship cart, Kailor Transport and Moving Services.
3: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
4: Long distance moving specialist,
1: HK Movers.
5: HK Movers.
6: Oh, haan bhai, ab badi highway da door pori hoi khadi hai, ki gal
7: aa? Accident ho gaya car da, tow truck nu phone kar lagi aa.
6: Oh, tow truck chhad, main sidha karda Skydome Auto and Body Center wale nu. Naale main truck da body work vi karaun jana utte.
7: Aho, main suniya Skydome wale sari insurance company nal deal kar diya. Naal hi hun meri car da emission test kar do na, nave tyre pawa diyo. Udharon beauty parlor jana, udharon car da panga. Aa shady karo, Skydome wale nu phone karo 905-876-9878.
6: Bhai, ghar wali beauty parlor to nikli hove te car Skydome to. Sone de swage wali gal hundi je.
8: ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 416-662-1313 416-662-1313

0: क्विक नाम नंबर 9 ऑटो सेल्स पिछले 35 साल तो किसी भी तरह की इंपोर्टेड डोमेस्टिक हाइब्रिड कार एसयूवी वैन नु बेस्ट प्राइस ते बाय करन लई और ग्रेट सर्विस लई कॉल करो 905-450-0009 यानी 905-450-0009 या विजिट करो साडी वेबसाइट 9autosales.ca मतलब हर बाइट विच फुल पैसा वसूल अपने नजदीकी स्टोर ते जाओ या पिज्जा डिपो डॉट सी ए ते ऑर्डर करो
1: जे तुसी बिजनेस करना है तो फ्रेंचाइजी एट पिज्जा डिपो डॉट सी ए ते आज ही अप्लाई करो पिज्जा डिपो स्वाद के साथ टॉपिंग्स नॉन स्टॉप

0: एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की,
1: तो यहाँ ये
0: स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA. चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर. विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर. 9057900560. स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट, रामटर्न.
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी. हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर. मयंक भटनागर जी, 6476702-2023-647-702-VTEI.
3: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
4: HK Movers,
3: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
4: For service with a smile, give us a call.
3: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
4: 416-524-6704.
3: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist,
3: HK Movers.
6: HK Movers.
7: रेडियो प्रोग्राम पंजाबी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जी. थोड़े बड़े अच्छ तो बया बया कराए ने का फोन आ गए, तो काफ़ी कमर्शियल भी लग गए, सो चंगी गल आ. इस तरह प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं भाई सरबजीत होनी, कहते जी बड़े वधिया गीत, तो एक अद्धा होर ला दो जाते जाते, सो आप गीत कढ़ लिया, वह भी वधिया थोड़ा जाते जाते सुना देना. सो अपने लौंगिक वधिया इंजॉय करो, हैप्पी विक्टोरिया डे लौंगिक थोड़ा सारियां. इस तरह नाल ही सानू मिस्टर मिसिज गिल भी सुन रहे हैं, प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं ऑलवेज, सो मैसेज भी भेजा गया, बहुत बहुत धन्यवाद जी. मनजीत सिंह CW हैंडरसन तो थोड़ा भी गीत आ रहा जल्दी जी, सो पर स्पॉन्सर किया जा रहा टैलीटाइम वालों. टैलीटाइम तुम चले हो किसी भी ब्रांच से, उतों लो तुम TV 50 तो लैके 85 तक 98 तक. अपलायंसिस लो, वो भी मिल जाएंगे. 6 महीने बाद पेमेंट करो, साल बाद करो, कोई हिडन फी नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन फी नहीं, पहला कोई पैसा नहीं देना. कहते प्राइस जितों मर्जी लाओ, तुम खबरों सजो प्राइस थोड़ी मैच नहीं हुई बल्कि बीट होएगी. टैलीटाइम पिछले लंबे समय तो TeleTime.ca जाकर विजिट कर लो. हेड ऑफिस का फोन नंबर 905-273-5550. गिल स्वीट समोसा फैक्ट्री दी 6 ब्रांचा ने, हुण 4 इत्थे ने, 2 अलबर्टा दे विच ने. 2131 विलियम्स पार्क दे मेन ब्रांच, इत्थे मिठाई बनती, देखो मिठाई इन्हां दी बहुत दूर दूर तक जाती है. गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म जलेबियां, भाजी तैयार करवानी है अपने विआह शादी लई, केटरिंग करवानी है वैजी केटरिंग, वह भी कर देंगे. तो नाल ही गिल स्वीट समोसा फैक्ट्री का नंबर 905-799-2616. आने समय तुम कोई पार्टी करो तो नाम है वर्दी कन्वेंशन सेंटर, बड़ी वधिया पार्टी करो इतने. 80 पीपल तक, 100 पीपल तक, बेस्ट रेट, बेस्ट सर्विसेज, बहुत ही वधिया बैंकट हॉल है, खुली डुली पार्किंग है. हुण पैटियो इन्होंने ओपन करता है, पैटियो नूं अपना बुक कराओ, बह के ठंडी ठार बीयर पीओ, अपने मनपसंद की ड्रिंक लो. समर के नंबर 416-720-2927. बेस्ट रेट, बेस्ट सर्विसेज. नंबर टू कॉल चार्ली सिंह 416-720-2927. आर्मी ट्रेडर्स का नंबर है 905-671-3370. इंडिया नूं पैसे भेजने लिए मंगवाने लिए कॉल कर सकते हो. 69 रुपये 50 पैसे तुसी किसी भी तरीके पेमेंट भेजनी, एक डॉलर कनेडियन दे ते दूसरे 92 रुपये 50 पैसे एक अमेरिकन डॉलर दे. नंबर टू कॉल गुरचरण बड़ौल 905-671-3370. 9056713770 कॉल कर सकते हो. सो यह साडा दोस्तों अज का प्रोग्राम, आने वाले शनिचरवार को फिर अगर सारा कुछ ठीक है, मेरा नंबर है 416-662-1313. हैव ए नाइस नाइस हैप्पी डे लोंग वीकेंड, गुड नाइट सारा, सत श्री अकाल. नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत दा भला.

सुरे कागज सगल सवारे हर जिन सिमरिया नाम आधारे ताप उतारिया संगुर पूरे अपनी कृपा धार रहा सदा आनंद कर हो मेरे प्यारे हर गोविंद गुर गाखिया वड्डी वड्याई नानक करते की गाखिया सूरत महला पंजवा भय कृपाल स्वामी मेरे तित साचे दरबार सतगुर ताप गवाया पाई ठान पाई संसार अपने जिए जत आपे राखे जमहे कियो हटदार हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई पिक काटन हार रहा।

आइए पाई मन तन शीतल हो। सोर खाला पंजवा संत हो हर हर नाम ते आई। सुख सागर प्रभु विसरो नाही, मन चिंदियाड़ा फल पाई रहा। सतगुरु पूरा ताप गवाया अपनी कृपा धारी। पार ब्रह्म प्रभ भय दयाला दुख मिटया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो। नानक पद राखी परमेश्वर उधरिया सब संसारो। सूरत माला मेरा सतगुरु रखवाला हो। काल कृपा प्रभ हाथ मेरा हर गोविंद बाबा दरुआ रहा। सात संगत के सब फल पाए। सतगुर के बल जाए

सफल कर मस्तक धारिया। सूरत महला पंजवा, जी अजंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाए, अपने से बकिया पे रत पूरन भई। पार ब्रह्म पूरा मेरा नाल, गुर पूरा पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहा।

0: गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5980 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: गुण गावत नानक आलाप।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

अरदास स्वामी मेरे सरब कला बने आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की बढ़ियाई सूरत माला पंजम सुख मंगल कल्याण।

रोग सपना से कब आना कृपा तारी। आज पहर आराधा स्वामी पूर्ण काल हमारी, हर जियो तू सुख संपत रात, रात ले हो पाई मेरे को प्रभा के अरदास। जो मांगो सुई सो पाओ अपने खसम परोसा, कहो नानक गुरु पूरा पेटियो मिटियो सगले अंदेसा। सूरत महला पंजवा, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सगला दूख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, जिनकार सब स्वामी पूरन पुरख विदाता रहा। अंग

0: पंच मुखी नवान कवच सभी प्रकार के इसके नियमित पाठ सभी प्रकार के रोग और कष्ट पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगलकारी और आप श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों आइए पंचमुखी श्री हनुमान जी के
1: श्री अंगारकटाच स्तोत्र महामंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषि गायत्री छंद अंगारको देवता अम बीजम कम शक्ति रम कीलकम मम अंगारक

अहनिस सहज सपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामंदी नूर अरसहां कुरसहां चट्टीऐ तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साह सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया

0: हीट वेव आ गई
1: की गल इतनी जल्दी।
0: हाँ जी ते पता है इसका की मतलब।
1: सनस्क्रीन हाइड्रेशन एनका
0: ते सेविंग्स भी।
1: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99
0: ओहो उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
2: ओ भाई इतना गर्मा गर्म डील है।
1: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
3: होलसेल क्लब होल लॉट ऑफ वैल्यू।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
5: खुशबू पंजाब दा रंग रंग पंजाबी अपनियां दा प्यार सच्चे जज्बातां दा इकरार
6: तुसी सुन रहे हो रेडियो रंग पंजाबी।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मांग, उन्हें ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना व्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे कम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: दे रहे हैं या और मदर्स डे पे 30%, फादर्स डे पे 80%, है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमारा सर्विस लिंक्ड है. तो आज गवर्नमेंट आपको, अगर आप गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स करते हैं, आप पीआर सिटीजन या प्रोटेक्टेड पर्सन है एंड आपकी इनकम 2024 के नोटिस असेसमेंट पे लेस देन $70,000 है, आज की डेट में आपको 30 से लेके 100,000 की फंडिंग आपके खाते में आती है डायरेक्ट गवर्नमेंट से, जिसका मेजर पोर्शन मोर देन 50% इज ग्रांट, जो नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं करना होता. इस फंडिंग के लिए भी ना कोई कोलेटरल है, ना कोई सिक्योरिटी और ना कोई चेक है, नो क्रेडिट चेक. और सीधा आपके, आप गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज करते हैं, इसमें फुली ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं सोखे जे, जो इजी हैं, 2-3 घंटे पहले मंडे टू फ्राइडे देने. ऑन अदर हैंड हमारे पास स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं, एचवैक, ईसीए, पीएसडब्ल्यू जैसे. ऑफिस हमारा 200 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे है, आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, कल भी हमारा ऑफिस ओपन है और ज्यादा देयर इज नो एज लिमिट.
1: मैं एक बार परिवार ने जरूर दसना चाहना, तुसी ए स्नेहा एहे प्रोग्राम बारे हो सकता तुसी काफी टाइम तो सुन रहे हो सकता तुसी अज सुन रहे हो, पर ए प्रोग्राम बड़ा बढ़िया प्रोग्राम आ जेड़ा के सिर्फ ए समझ लो जून जुलाई दे तक ही आ, 1.5-2 महीने ही आ, इस तो बाद ए प्रोग्राम दे विच चेंजेस आने लगे ने. सो हुण अवेसले ना हो, इहदे बारे एक बार तुसी कॉल करके ना तो डिटेल जरूर पुछ लो की आ कि जे तुहाडी इनकम 2024 दे नोट्स ऑफ असैसमेंट ते 70,000 बड़ा ईजी पास कर रहे ने, पर असाइनमेंट ते टेंडर्स उही मेन चीज़ां ने. सो तुसी ए स्टडी लैनी है, गवर्नमेंट कहिंदी है जे इनकम 70,000 तो घट आ, तुसी पीआर हो, सिटीजन हो, तो तुसी अप्लाई करो एंड उहदे विच कोई स्टडी लै लो, गवर्नमेंट ने तुहानू ग्रांट देनी आ, फीसां भरनगियां, तुहानू खर्चे लई पैसे मिलणगे ते तुहानू ऑप्शनल लोन भी आ. ते उह लोन बई जी किन्ना क हुंदा गा ते लोन ते इंट्रस्ट कितें ज़्यादा तो नहीं हुंदा?
0: एक ऐसा लोन है जो पूरे लाइक हम मान के चले नो क्रेडिट चेक इस लोन के लिए. नंबर टू, इसका इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको मैं बताता हूँ कैसा. जैसे फैमिली ऑफ फोर है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, बच्चे उनके मान के चले कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों सोखे जो कोर्सेज करते हैं जिसमें जैसे आपने कहा असाइनमेंट है, एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ 2-3 घंटे मंडे टू फ्राइडे वो ऑनलाइन रहते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो सेल्फ स्टडी, जिसमें टीचर नहीं होता, सेल्फ स्टडी वाले भी प्रोग्राम्स हैं, वो इससे ईजी है. तो इसमें वो हस्बैंड भाई ऐसे कोर्स करते हैं, ठीक है, 80,000 की फंडिंग उनके अकाउंट में बनती है अप्रॉक्सीमेटली, $80,000. अब उनके लाइक, अब इसमें से हाफ पोर्शन क्या है, नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स, और हाफ पोर्शन है $40,000 इस केस में हुआ, $40,000 ऑप्शनल लोन. अभी जो लोन है ये एक साल तक, जब तक आप एनरोल्ड है तब तक ये 0% पे है. पे बैक कब स्टार्ट है इसका? 1.5 साल बाद, मतलब 1 साल के बाद भी 6 महीने का ग्रेस पीरियड है, उसके बाद आपने ये लोन लौटाना शुरू करना है. और उस टाइम में ब्याज दर क्या है? 2.5% पूरे साल का ब्याज. $40,000 का जो लोन है ऑप्शनल है, इसकी किस्त मिलेगी $400, जिसका ब्याज सिर्फ होगा $40. ये अप्रॉक्सीमेट है 10 साल में अगर आपसे पे करते हैं, तो ऐसा लोन भी कहीं नहीं मिल सकता. और गारंटी इतनी बन जाती है लोगों की कि वो लोन तब भी लेते हैं, क्योंकि वो लाइक इट्स अ वेरी चीप लोन. आप ऑफिस आए हमारे, हमसे बात करें, आपका एक ट्रिप आपको 30 से लेके 100,000 की फंडिंग आज की डेट में दिला रहा है. 3 बैच रह गए हैं, उसके बाद जो नया अकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, फिर सिर्फ लोन आएगा 80,000 का फैमिली ऑफ फोर को. आज आधा लोन आधा ग्रांट आ रहा है नॉन रिफंडेबल, जो वापस नहीं करना.
1: ते एक दो चीजा होर दसो, ताडी फीस किन्नी आ? जेडे पैसे आउणगे पहला तुहानू आउणगे, तुसी सानू सेंड करने आ, जा गवर्नमेंट तो सीधा होगा, ते अप फ्रंट फीस किन्नी आ, जा बाद दे च फीस आ, किन्नी फीस है?
0: अप फ्रंट फीस हमने रखी नहीं, हमारा काम वॉल्यूम में काम करना, हम चाहते नहीं कुछ भी लाइक लोग मतलब दुखी हो ना. हमने पैसे भी बड़े कम रखे हैं और 7 ईयर से बिजनेस में है, क्योंकि हम जब फंडिंग सुनते हैं लगता है कुछ कैच होगा, होना भी चाहिए. बट यहाँ पे जी नोटिस ऑफ असेसमेंट आपकी 10th, ये कागज लगते हैं, हेरा फेरी कुछ है नहीं, सेटिंग अप्रोच कुछ है नहीं. आप आज एनरोल करते हैं, विद इन 30-90 डेज में आपको ईमेल आता है गवर्नमेंट से, अपना ईमेल से खुद बैंक सेटअप अपने घर पे करते हैं और आपके अकाउंट में फंडिंग आती है, मेरे अकाउंट में नहीं आती, पहली बात. और इसमें लाइक कागज ही बता दिया, सोखे थे कागज ने गवर्नमेंट के पास, वो कागज आपके पहले से ही है जी, क्या क्या रेफरी करोगे आप, बैंक थोड़ी है ये, कोई कैच इसमें है ही नहीं. और हमारी फीस काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है, कितनी है? $199 से $499. कोई और आपने कोई परसेंटेज कमीशन इसके अंदर है नहीं, जैसे गवर्नमेंट $billions, यानी कि मैं जैसे बताता हूँ, आप मान के चले वियतनाम में राइस फार्मिंग की इक्वालिटी के लिए $8.2 मिलियन गवर्नमेंट ने दिया.

0: क्यूबा को अभी बिजली संकट क्यूबा में $8.2 million दिया। गवर्नमेंट इतना पैसा फॉरन एड में लगाती है, थोड़ा सा एजुकेशन में लगाती है, हमें लगता है भाई सब कुछ कैच होगा, कोई कैच नहीं है। और आप एनरोल करें, बहुत लोग ऑलरेडी लाह ले चुके ने, तो कोई नई चीज नहीं है ये। आप हमारे ऑफिस आए और हमें देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नो क्रेडिट चेक।
1: जेडे हुण तुहाडे कोल अप्लाई करदे ने ज्यादातर केड़ी एज दे क्लाइंट फाइलां हैगियां ने तुहाडे कोल?
0: ज्यादातर दी एज 40 तो ज्यादा ही हैगी, 40 इयर्स मेन एज हैगी, 40 50 60 75 इयर्स। जो लोकी पेंशन ते हैगे ओह भी अप्लाई करदे ने, इतने सक्सेसफुली पढ़ भी रहे ने, साथ ही साथ फंडिंग अपने अकाउंट हासिल कर चुके ने। आते बड़े लोग सिंगल मदर आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, ट्रक ड्राइवर, उबर ड्राइवर, जो एवरीडे अप्रोक्सीमेटली एवरीडे 7 बंदों की फंडिंग उनके खाते में ट्रक जाती है एवरीडे। रोज आप मिठाई का, कभी कभी ऐसा होता है मिठाई की दुकान हमारी यही बन जाती है, तो वही जो रह गए वो भी आए।
1: वेरी गुड। सो दोस्तों, नागपाल सर जी दसदे आ रहे ने कि हुण सिर्फ 2 या 3 बैच लास्ट बैच ही रह चुके ने, लिमिटेड सीट्स ने, लिमिटेड टाइम है। तुसी जे सुनेहा दिंदे आ रहे सी, एक बार इन्हां नूं कॉल करो, ओवर द कॉल ही इन्हां ने तुहानूं दस देना तुसी एलिजिबल हो ते किन्ने पैसे लई एलिजिबल हो। दूजी जदों विजिट करोगे तुसी 2-4 डाकूमेंट लैके आने आ, खाते च पैसे आ जाने, इस तों बाद तुसी इन्हां नूं 200-400 जो भी आ उह डालर तुसी दे देना। सो नंबर टू कॉल 437-264-3175 437-264-3175 70,000-40,000 खाते च आउंदा किनू नहीं चंगा लगदा, चंगा लगदा तां इक वारी अविसला पान जा के लिए। आपां कहिंदे यार सुन रहे हां सुनेहा ते हुण बिल्कुल डेडलाइन दे नेड़े आ चुके हां, सो हुणे कॉल करो 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी, नागपाल साहब यूनिक ग्लोबल तो।

0: आपको ज्यादा बेनिफिट है जी, आप इस मौके को छोड़े ना। ग्रांट उसे कहते हैं जो टैक्स फ्री होती है और वापस नहीं करनी होती, नॉन रिफंडेबल पैसा होता है वो। गवर्नमेंट आज आपको पैसा दे रही है, आज आप नखरे ना करें, क्यों? 2 महीने बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट कर रही है, तब सिर्फ लोन आएगा। आज 80,000 की फैमिली फोर को ग्रांट आ रही है, मतलब हाफ पैसा ग्रांट आ रहा है, 2 महीने बाद पूरा 80,000 लोन है। तो आप अभी स्किल डेवलप करें, हमारे ऑफिस आ पाएं, हमारा ऑफिस कल भी ओपन है और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 437-264-3175।
1: 437-264-3175 ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 4372643175। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਰੋਕ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰਾਬ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੋਨ ਜਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੀ?
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ, ਆਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸਮੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵੀ ਆਪਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਆਪ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ तो डिपेंड करता है। बट क्रेडिट चेक, अगर आपका बैंकरप्सी डिस्चार्ज हो गया या फिर इसमें क्रेडिट मैटर नहीं करता, अगर बैंकरप्सी नहीं है तो। अगर बैंकरप्सी है, डिस्चार्ज लेटर है, आप तब भी एलिजिबल है।
1: वेरी गुड।
0: अगर आपका क्रेडिट स्कोर जीरो भी है तो भी मैटर नहीं करता,
1: क्योंकि क्रेडिट स्कोर का कोई इशू नहीं
0: है। ही नहीं, इशू ही नहीं है। गवर्नमेंट क्रेडिट चेक नहीं करती आपको, गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए फंड करती है, आप स्किल डेवलप करें।
1: कोई ये हो सकता कि ये आपा अप्लाई कीता ते वो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट करता?
0: टच वुड नजर लगे। देखिए जो होता क्या है इसमें, इसमें रिजेक्शन नहीं होती। अब मानेंगे इसमें डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, जैसे अगर आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, गवर्नमेंट आपसे एफिडेविट मांग लेगी। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का तो आपके पास होता ही है, मान लो नहीं है तो 1 महीने में आ ही जाएगा। अगर आपने बच्चा बेबी अगर हुआ है, राइट, तो इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सबका अप्रूव हो जाता है इसमें 1 महीने से 3 महीने के अंदर। किसी किस्मत इतनी तेज होती है कि उसका 15 दिन में अप्रूव हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं बोलते, हम 30 दिन से 90 दिन में बोलते हैं। आपके अकाउंट में फंडिंग ट्रैक लॉन्च हो जाती है विद इन 30-90 डेज और इसमें रिजेक्शन रेट है ही नहीं। तो बड़ा अच्छा लग रहा सुनने, बट ऐसा है, तभी हम इस काम में हैं। बाद में हम वो काम नहीं, हम और कोई फंडिंग में डील ही नहीं करते। एजुकेशन कंसल्टेंट है, 7 ईयर से बिजनेस में है, हजारों क्लाइंट को असिस्ट कर चुके हैं और आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। कोई कैश इसमें है ही नहीं, हमारी फीस भी काम होने के बाद है, कोई परसेंटेज, कोई कमीशन नहीं है। क्लाइंट्स आते हैं ऑफिस में, कहते हैं सर पहले हमने किसी एजेंट को 3500 दिया, 4000 दिया और अपफ्रंट दिया। हम तो जी बाद में लेते हैं, शुरू में लेते ही नहीं, वो भी $200 से $500 फीस है हमारी, क्योंकि कैश हमने रखा ही नहीं और आपकी ईमानदारी से आपने देनी होती। फंडिंग किसके अकाउंट में आ रही है, मेरे या आपके? आपके अकाउंट में आ रही है।
1: सो नंबर दोस्तों एक ही है, तुहानू तुसी पेंशन ते हो जां तुसी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तुसी ट्रक चलाने हो, ऊबर चलाने हो, हाउस वाइफ हो। अच्छा, सिंगल मॉम बारे भी दस दो, जिहड़े सिंगल मदर ने एंड वो भी अप्लाई कर सकते हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सिंगल मदर हैं और उनके मान के चले 1-2-3 kids हैं तो फंडिंग ह्यूज हो जाती है, ह्यूज। गवर्नमेंट ज्यादा बेनिफिट देती है उनको और इसमें अब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 महीने में अराउंड 5-10 सिंगल मदर के क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास और उनकी फंडिंग आराम से 60-100 बन जाती है डिपेंडिंग ऑन केस। और इसका आधा पैसा क्या है, ग्रांट। बहुत लोग आते हैं, बहुत ब्रोक लोग आते हैं, कुछ बेचारे अब मान के चलेंगे कुछ लोग पूरे मतलब कपड़े भी ऐसे होते, मतलब फटे हुए होते, राइट। ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं और हमारे ऐसे लोग भी आते हैं जो टफ टाइम से गुजर रहे हैं, अच्छे बिजनेसमैन थे, किसी टाइम पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। तो वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, हम सबको बड़े लकी थे, छोटे सबको असिस्ट कर पा रहे हैं। आप भी पीछे ना रहो, 2 महीने बाद ग्रांट की जगह लोन आएगा। आज ग्रांट आ रही है, नॉन रिफंडेबल पैसा गवर्नमेंट दे रही है आपको, मत मिस करें। एजुकेशन के लिए दे रही है, मैं नहीं कह रहा आपके बिजनेस फंडिंग कर देगी ना, वो काम में क्या नहीं करते वो काम।
1: वेरी गुड। सो दोस्तों एक नंबर ताडे होर क्वेश्चन राइज हो रहे ने, ता तुसी बिना देरी किते इन्हां नूं कॉल कर लो, क्योंकि हुण सिर्फ 2-3 बैच जिहड़े रह चुके ने ते बड़ा जल्दी रूल दे विच चेंज आ जाने आ, लोन ही मिलिया करूगा, ग्रांट जिहड़ी मिलनी बंद हो सकदी आ, हो रही आ। सो तुसी यूनी ग्लोबल तों नागपाल जी नाल गलबात कर सकदे हो, इक्को इक नंबर आ 437-264-3175 437-264-3175 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 218 ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਲੇਵਰਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 437-264-3175। ਕੋਈ ਅਪ ਫਰੰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਆ 200-400, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। 437-264-3175 437-264-3175। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल इतनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लगो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 च।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: कि तुसी देश विच नवे हो, नेशनल बैंक कैनेडा विच तुहाडे पहले कदम चक्कन विच तुहाडी मदद करन लई इत्थे है। मनी सेंस अनुसार 2025 कैनेडा विच नवे आउण वालियां लई सब तो वधिया बैंक बारे जानो अते नवे आउण वालियां लई सारी बैंकिंग सेवावां दे नाल शुरुआत करो। नेशनल बैंक, कुछ बनाओ। कि तुसी देश विच नवे हो, नेशनल बैंक कैनेडा विच तुहाडे पहले कदम चक्कन विच तुहाडी मदद करन लई इत्थे है। मनी सेंस अनुसार 2025 कैनेडा विच नवे आउण वालियां लई सब तो वधिया बैंक बारे जानो अते नवे आउण वालियां लई सारी बैंकिंग सेवावां दे नाल शुरुआत करो। नेशनल बैंक, कुछ बनाओ।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton,

0: आफ्टरनून, वेलकम टू डेट ऑल द शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी एक बजे एक घंटा होर तुहाडे लई बहुत सारे पैसे बचाउण दा इंतजाम करिए, चाहे ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस होए जां फिर अपने ग्रैंड फर्नीचर वाले साडे सुख साहब होण, पैसे दी बचत कीती जाएगी। सुल्तान जी प्रोग्राम स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।
0: सुल्तान जी लॉन्ग वीकेंड है
1: जी,
0: ए क्वीन विक्टोरिया दा जन्मदिन सी।
1: हां जी,
0: मई 25 नूं लॉन्ग वीकेंड शुरू हो गया। हुण तुसीं आपदा योगदान पाओ क्वीन विक्टोरिया दे जन्मदिन ते, तुसीं की स्पेशल दे रहे हो?
1: विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड जेड़ा जी, एदे विच जेड़ियां प्राइसेस है, असी ओ मदर्स डे वालियां प्राइसेस जेड़ियां कंपनी को दोबारा रिपीट करवाईयां। ओदी रीजन ए है कि जिदा हमेशा असी कहने कि मदर्स डे भी साल च एक बारी आउंदा ते मदर्स डे दियां प्राइसेस भी साल च एक बारी ही दित्तियां जांदियां, पर चंगी गल ए होई कि राइट आफ्टर मदर्स डे विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड आ गया ते कंपनी एग्री कर गया कि इनू असी एक्सटेंड कर दईए। सो इस करके लोएस्ट प्राइस गारंटेड अज तुहानू लैके दे रहे हैं। जे आपां गल करिए ना जी काउंटर टॉप, काउंटर टॉप किचन अपलायंसेस ते निंजा क्रिस्पी, निंजा एक्चुअली प्रीमियम ब्रांड है जी काउंटर टॉप किचन अपलायंसेस दे विच, ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ने निंजा क्रिस्पी एयर फ्रायर जिहड़ा कि टू ग्लास कप्स दे नाल है, टू ग्लास पॉट्स दे नाल है, $300 वाला सिर्फ अद्धी प्राइस ते $149 च दे रहे हैं। पर है साडे कोल सिर्फ चार पीस इन स्टॉक है, फोर लकी कस्टमर कैन गेट इट राइट अवे। सिर्फ $149 च निंजा क्रिस्पी एयर फ्रायर लेना है ते राइट अवे कॉल करके ते अपना होल्ड करा लो। 905-450-2828 नंबर है। जो एहो जिया वधिया वधिया प्राइसिस मिलनी है फिर बिग स्क्रीन टीवी दे उपर,
0: हाँ जी
1: 85 इंच सैमसंग दा टीवी है जी,
0: 85 इंच सैमसंग डब्बे च बंद,
1: फैक्ट्री सील्ड ब्रांड न्यू डब्बे च बंद। वैसे दी सेल प्राइस सिगी जी $1499, रेगुलर प्राइस हैगी इहदी $1800, पर ओनली एंड ओनली विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड $999।
0: लो जी
1: सिर्फ $999 है, 18 मई मंडे तक अवेलेबल है। जे तुसी ट्यूजडे लवोगे अज ही दस देना कि ट्यूजडे आले दिन ए तुहानू $1500 दा मिलना।
0: सैटरडे संडे मंडे ए तीन दिन प्राइस है,
1: तीन दिन ही प्राइस रहेगी $999, 85 इंच ते $999, पे भी 6 महीने च करना।
0: हाँ, ब्याज कोई नहीं,
1: इंटरेस्ट कोई नहीं, हाँ। डिलीवरी कोई नहीं चार्जेस, फ्री हाँ। डिलीवरी भी है,
0: हाँ जी।
1: सो पहुंचना है तुसी बिग सेविंग्स बिग स्क्रीन दे उपर, ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस 905-450-2828, 55 इंच टीवी चाहिदा नो प्रॉब्लम चको $399 दा, 65 इंच टीवी चाहिदा नो प्रॉब्लम चको $699 दा।
0: मोड़ के फिर आयो 50 इंच वाला किन्ने दा जी?
1: 50 इंच वाला तां $349 जी, 55 इंच वाला $399
0: ते 60
1: 65 इंच वाला 60 नहीं हुण बनदा जी,
0: अच्छा
1: 65 इंच वाला $699
0: 75 इंच
1: भी चलो अज दिने जी मदर्स डे ते आपा एक दिन वास्ते लगाया सी, सेम प्राइसिस जड़ी है वो असी एस टाइम ओदी अप्रूवल लई है सैमसंग कंपनी कोलो
0: जी,
1: $3500 वैसे दी प्राइस है, सेल ते $2799 दा वेच दे रहे हैं जी, $1999 च 98 इंच सैमसंग फ्री डिलीवर करवाना ते 6 महीने च पे करना ते फिर राइट वे पहुंचना किथे जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है, ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस या फिर brampton appliances.com साडी वेबसाइट तो डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकदे जी। 905-450-2828 नंबर है, सिर्फ कॉल करके नाम ते नंबर दे के, चाहे तुहानू निंजा क्रिस्पी दा एयर फ्रायर चाहिदा, चाहे तुहानू टॉप लोड वाशर एंड ड्रायर चाहिदा, चाहे तुहानू 32 इंच तो लग के 98 इंच तक टीवी चाहिदे है, सिर्फ तुसी कॉल करके अपना नाम ते नंबर दे के होल्ड करा लेना ते फिर शोरूम च आके चेक करके कंपेयर करके फिर डिलीवरी स्केड्यूल करियो, क्योंकि पेमेंट तो तुसी 6 महीने च ही करनी है। ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 905-450-2858-59 ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ $300 ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚ $149 ਦਾ 905-450-2858।
0: ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ,
1: ਹਾਂਜੀ,
0: ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
1: ਜੀ ਗਲਾਸ ਪੌਡ
0: ਆ। ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਇਰ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਉਹ ਪਲੇਟ ਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ।
1: ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਵਾਸ਼ ਤੇ 15 ਮਿੰਟਸ ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਜਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਪ੍ਰੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਜਾਂ 8 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਨਿੰਜਾ ਜੂਸਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਰਟ ਦੇ ਜੂਸਿਸ ਹੈ,
0: ਹਾਂਜੀ,
1: ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੂਸਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੈਰਟ ਵੀ ਐਪਲ ਵੀ
0: ਸੰਤਰੇ,
1: ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਔਰੰਜਸ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੂਸ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਫਿਲਟਰ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਪਲਪ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਪਲਪ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਪਲਪ ਜੂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਪਲਪ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਪਲਪ ਰਾਈਟ ਵੇ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ।
0: ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ ਪਲਪ ਵਾਲਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਪ।
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ $400 ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ 199 ਚ ਨਿੰਜਾ ਜੂਸਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਵੇਡ ਐਂਡ ਚਿੰਕੂਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੀ 905-450-2858। ਚੱਕ ਲਓ ਡੀਲ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਸੋਲਡ ਆਊਟ।
0: ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੁਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ।
1: 905-450-2858-9054502828।